0: 8 to 10 95.1 FM ते ऑन एयर पेश कीता जांदा है। इस विच धार्मिक गाने लोक गीत चलते हैं। सो इत्थे ही साढ़े टाइम की समाप्ति है। और कुछ रह गया होवे? हाँ, एक चीज़ रह गई है। इसका फेसबुक पेज है 2MIA बॉबी पंजाबी टॉक शो। इसके सारे ही प्रोग्राम आते रहते हैं। अगले हफ्ते दास फिर आपकी सेवा में हाजिर होएगा। रब राखा।
1: सो दोस्तों, इत्थे आपां इस फेसबुक लाइव का एंड करते हैं। होप तुसीं अज दी वीडियो लाइक कीती होगी। आपां मिलदे आ तुहानूं अगले हफ्ते इस टाइम 8 to 10 तक विचकार आपां लाइव वीडियो करते हैं। सत श्री अकाल, गुड नाइट। बट आपां ऑन एयर 10 तक। सो रिक्वेस्ट भेजने लई साडी वैबसाइट ते जाओ www.2miafm.org.au ते उत्थे जा के रिक्वेस्ट वाला बटन प्रेस करके जो भी पंजाबी सोंग तुसीं सुनना चाहते हो 10 तक तुसीं सुन सकदे हो। सत श्री अकाल, गुड नाइट। सो दोस्तों, हुण आपां प्ले करते हैं सोंग्स, पंजाबी सोंग्स। सो पहला सोंग जो चलावांगा पिंडा दे जाए सज्जन अदीप दा सोंग। इंजॉय करो इस सोंग नूं। आपां बैक टू बैक सोंग चलावांगे जिदा जो रिक्वेस्ट आऊगी। सो पिंडा दे जाए पहला सोंग।
2: तेरी शांत जी तस्वीर पानी नाल दी वगदी निवाणा वल नूं ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਦੀ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਲੰਘਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਦੀ।